नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका, ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन।

0: किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी।
0: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
2: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: Deeply appreciate that the government and people of
3: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय असैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट।

0: साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। ओडिशा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत, बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, डिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वीर शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार।

0: जनसत्ता लिखता है जीते प्रशांत विरोधी अशांत, भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित, गृह मंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजरें अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट, डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका, ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट्री कमेटी क्रिटिसाइजेज मेटा ओवर रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज वीडियो फ्रॉम फेसबुक, सीक्स अपॉलॉजी फ्रॉम सीईओ मार्क जकरबर्ग। NDA Parliamentary Party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning. Supreme Court says state governments can close or withdraw FIRs against students involved in recent protests. US President Donald Trump warns Iran of last chance to reach an agreement with Washington. Tehran denies reports of negotiations. An Indian shuttlers to begin their campaign at Korea Masters 2026 badminton tournament today. And now the news in detail. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him.
3: ये माफी नामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए।
2: Prime Minister Modi has underlined that talents are honed and refined through continuous effort and dedication. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi noted that today the youth of the country are imbibing these very qualities and illuminating India's name across the world. The National Democratic Alliance or NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting known as Mangal Milan will be held in the Parliament House this morning. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India,

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: गुड मॉर्निंग और नमस्कार 107.1 FM रेनबो सुनने वाले हमारे सारे लिसनर्स को, हमारे सारे प्यारे लिसनर्स को, आपके प्यारे आरजे अनूप का मुस्कुराता हुआ प्रणाम। और लेकर मैं क्या आया हूँ आप जानते ही हैं, सुबह सुबह मस्त मुंबई है शो का नाम। चलिए कुछ बातें करते हैं आपसे दोस्तों। कैलेंडर पर आज तारीख है 4 अगस्त, और 4 अगस्त की बात अगर मैं करूं तो भारतीय संगीत के इतिहास में ना इस तारीख को किसी उत्सव से कम नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज जन्मदिन है उस जादूगर का, अगर हम उसे हरफन मौला कहें तो शायद सही होगा, जिसकी आवाज़ में कभी ना नटखटपन था, जिसकी अदाकारी में नटखटपना था, तो कभी उनकी आवाज़ में ना एक रूह को दर्द देने वाली बात भी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं क्यों बताऊं आप लोगों को, शायद आप खुद ही समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं। अगर आप समझ गए मैं किनकी बात कर रहा हूं, आज किनका जन्मदिन है, तो मुझे तुरंत बता दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 8657661071 पर अपना नाम और अपने शहर का पता भी बताइएगा, मैं आपके जवाबों का इंतज़ार करूँगा दोस्तों।

0: यस आज हमको बहुत चैन मिलने वाला है दिल को, क्योंकि दोस्तों आज जिनका जन्मदिन है ना, वो हमारे लिए बहुत खास है और काफ़ी सही जवाब भी हमारे पास आने लग गए हैं। सबसे पहले कुछ जो लोग इन्होंने सही जवाब दिया है वे है सांगली से प्राजक्ता अग्निहोत्री, अकोला से प्रमोद चिंचोलकर जी और उल्हासनगर से कल्पना राजू जी है, और भी काफ़ी हमारे लिसनर्स हैं। चलिए बताएंगे उनको कि इस ऐड के बाद मैं बताता हूँ कि इसका सही जवाब क्या है।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आरजे अनूप, आप सुन रहे 107.1 FM रेनबो। मैंने आपसे पूछा था कि आज जिनका जन्मदिन है वो कौन है, जिनकी आवाज़ में कभी नटखटपना था तो कभी रूह को छू लेने वाला दर्द भी था। तो काफ़ी लोगों ने इसका सही जवाब दिया, और देखिए दोस्तों मैं आपको सभी को बता देता हूँ, इसका सही जवाब है किशोर कुमार जी। जी हाँ, आपके मेरे और हम सभी के प्यारे किशोर कुमार दा की। तो आज FM रेनबो पर आप और मैं हम मनाने वाले हैं किशोर उत्सव। तो अगले कुछ पलों में मैं सुनाऊंगा आपको उनकी ज़िंदगी के कुछ अनदेखे किस्से और बजाऊंगा आपके और मेरे कुछ पसंदीदा नगमे। तो चलिए शुरुआत करते हैं किशोर दा के इस सदाबहार नगमे से।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो रे भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ कर्नल सिंह, ओ कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू शर्तें लागू आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: वेलकम बैक, आप सुन रहे 107.1 FM रेनबो और मैं हूं आरजे अनूप जिया। बहुत अच्छा लग रहा है जानकर कि कितने हमारे सारे लिसनर्स हैं जिनको पता है कि आज हमारे बहुत ही प्यारे द लेजेंडरी किशोर कुमार जी जो है उनका जन्मदिन है। बहुत सही जवाब आ रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में नाम पढ़कर सबका बताऊंगा। अभी सही जवाब दिया है मंगला मुकुंद पथारे जी जो डीएन नगर अंधेरी वेस्ट से है, गणेश फाटक जी भांडुप से है, शुभदा जो है पुणे से, राकेश माथुर भी जो है वो भी पुणे से है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम किशोर कुमार जी की जो बात कर रहे हैं और उनकी आवाज़ पे पूरा देश जो मरता है, जो मंत्रमुग्ध है, थिरकता है, उनका असली नाम तो किशोर कुमार था ही नहीं। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से खूबसूरत शहर खंडवा में जन्मे इस नटखट बालक का नाम रखा गया था आभास कुमार गांगुली। उनके पिता कुंजीलाल जी वकील थे और घर में बंगाली माहौल था। बड़े भाई अशोक कुमार यानी दादा मोनी बंबई में बड़े स्टार बन चुके थे। आभास भी जब बंबई पहुंचे तो उन्हें सिर्फ अपने गुरु केएल सहगल साहब के गाने गाते थे, लेकिन उन्हें फिर मिली एक ऐसी सलाह जिसने भारतीय संगीत की तकदीर ही बदल दी।

अब वो सलाह क्या थी, अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 8657661071 पर। तो वो सलाह क्या थी बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक सुनते हैं एक खूबसूरत सा एक नगमा।

107.1 FM रेनबो, मैं हूँ आपका प्यारा आरजे अनूप। और किशोर कुमार जी के गानों का सिलसिला जब चालू होता है ना दोस्तों, तो मज़ा ही एक अलग होता है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? तो बात हो रही है जब किशोर दा की, तो दोस्तों शुरुआती दिनों में ना केएल सहगल साहब की नकल करके गाते थे। तो एक दिन दिग्गज संगीत कलाकार जो है, संगीतकार SD बर्मन जी, सचिन देव बर्मन जी जो कहते हैं, उन्होंने रुका और कहा कि किशोर दूसरों की नकल छोड़ो और अपनी खुद की आवाज़ पहचानो। और बस किशोर दा ने अपना खुद का एक स्टाइल बना दिया। उन्होंने पश्चिमी संगीत से योडलिंग सीखी और उस जमाने में दोस्तों किसी भारतीय गायक का इस तरह से योडलिंग करना बिल्कुल नया था। और पूरा देश जो है उनके इस योडलिंग का

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

कितना खूबसूरत गाना है। और किशोर दा जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे सितारे हैं जो कहीं ना कहीं, सही कहूँ दोस्तों, तो हमारे हमसफ़र बन ही चुके हैं। सही कह रहा हूँ ना? आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और मैं हूँ आपके साथ आपका प्यारा आरजे अनूप। दोस्तों, किशोर दा जो थे ना, वे एक महान गायक ही नहीं बल्कि एक बहुत ही अजूबा जीनियस थे। अब मैं आपको अजूबा क्यों कह रहा हूँ, एक उदाहरण देके बताता हूँ। उनके घर के बाहर ना एक बोर्ड लगा हुआ रहता था जिस पर लिखा रहता था कि बीवेयर ऑफ किशोर, यानी किशोर से सावधान। सोचिए कितनी हैरत अंगेज करने वाली बात है। तो हुआ यूं कि एक बार एक डायरेक्टर ने बिना पैसे दिए, या शायद उनसे कुछ कम पैसे दिए होंगे, उनसे काम कराने आए। तो उन्होंने क्या किया, किशोर दा ने अपने चेहरे के एक तरफ पर ही मेकअप लगाया और शूटिंग करने पहुंच गए। जब उनसे पूछा गया कि भैया आप ऐसे क्यों आ गए, तो उन्होंने मजाकी अंदाज में बोला कि अरे देखो, आधा पैसा दिया है तो आधा ही चेहरा तो दिखेगा ना। तो किशोर दा के साथ ना दोस्तों, ऐसी ही अनगिनत मखमली और अतरंगी यादें। कितनी यादें हम बता सकते हैं, समय परवानगी नहीं देगा, पर जितनी बता पाएंगे उतना हमको भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा। कुछ ऐसी किशोर कुमार की अतरंगी यादें अगर आपको याद आ रही है तो हमें तुरंत व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 8657661071।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: अरे नैना, ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना, हाय हाय मीठे बहना।

0: जी हाँ, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लिसनर्स हमारे एंजॉय कर रहे हैं आज का शो। सुनने वालों में है शिवानी जो चंडीगढ़ से सुन रही है हमें, और आदित्य, निधि अरुवी और अनिरुद्ध कोलकाता से जुड़े हैं, विभूति श्री, शरण्या एंड शिवान्या न्यू दिल्ली से जुड़ी हैं, ईरा अंधेरी से, अंकिता जो है विरार से सुन रही हैं, कौस्तुभ जो है वो गोवा से सुन रहे हैं। मज़ा आ रहा है दोस्तों कि पूरे भारत में किशोर कुमार के इतने चाहने वाले हैं जो इतना दिल लगाकर हमारा शो सुन रहे हैं।
1: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: luga baga do tere re re re do re
1: main hu jhum jhum।

वेलकम बैक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज किशोर कुमार दा की, जिनका जन्मदिन है और वो हमारे दिल में, जन्मदिन हो या ना हो दोस्तों, बसते तो रोज़ ही है, हर पल बसते हैं। तो दोस्तों, एक बड़ी अतरंगी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1985 का जो फिल्मफेयर अवार्ड्स था उसमें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में ना चारों के चारों नॉमिनेशन जो थे वो किशोर कुमार दा के थे। और फिर जीत हुई थी शराबी फिल्म के मंजिले अपनी जगह गाने की। सोचिए, चारों के चारों नॉमिनेशन, कितना दबदबा रहा होगा उनका। और एक और रिकॉर्ड की बात करूं तो किशोर कुमार दा जो है हमारे, उनके नाम बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर जीतने का सबसे ज़्यादा फिल्मफेयर का रिकॉर्ड है। उन्होंने 1972 में रूप तेरा मस्ताना से लेकर खाई के पान बना, रसवाला, पग घुंघरू बांध और सागर किनारे जैसे गीतों के लिए यह खिताब अपने नाम किया। तो फिल्मफेयर के अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें 1985-86 में लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा। इसी के साथ उनकी विरासत को अमर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सिनेमा जगत के क्षेत्र में उनके योगदान को याद करते हुए किशोर कुमार, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की भी शुरुआत की। कितनी प्यारी बात है ना, कितना कितना आदर और सम्मान है हम सबके मन में किशोर दा के लिए।

और काफ़ी लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श कनौजिया जी मुंबई से कह रहे हैं कि आपके ये जो प्रोग्राम है किशोर कुमार जी के बारे में जो बातें कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। प्रकाश शिंदे जी ने काफ़ी लंबे मैसेजेस किए हैं और कह रहे हैं कि उन्हें किशोरदा से बहुत प्यार है और उनका सौभाग्य नहीं रहा उनसे मिलने का, पर उन्होंने अपनी एक तस्वीर भेजी है हमारे व्हाट्सएप पर उनके पुत्र अमित कुमार जी के साथ। प्रकाश जी, बहुत प्यारी तस्वीर है। और अगला गाना जो है उसकी फरमाइश की है वैभव श्रीवास्तव ने, तो चलिए

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो पर मस्त मुंबई और मैं हूं आपका प्यारा आरजे अनूप. दोस्तों, हम लोग ना अक्सर किशोर दा को उनके चुलबुले अंदाज और कॉमेडी गानों के लिए याद करते हैं, है ना. लेकिन गजब हैरत की बात यह है कि किशोर दा ने कभी कोई औपचारिक शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ही नहीं ली, और जब उन्होंने इसके बावजूद कुछ भावुक गाने गाए तो सुनने वालों की आंखें उतनी ही नम कर दी. चिंगारी कोई भड़के गाना हो, या मेरे महबूब कयामत होगी, या आने वाला पल हो, या अनेक उनके जो गाने हैं, उनकी आवाज़ की गहराई सीधा रूह तक उतर जाती थी. ऐसा लगता था कि जैसे हर शब्द को उन्होंने जिया हो और उनके साथ हम भी कहीं ना कहीं उन शब्दों को जी रहे थे. आइए सुनते हैं किशोर दा की आवाज़ का एक संजीदा पहलू.

दोस्तों, इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, एक एक को पढ़ पाना शायद से मुमकिन ना हो, पर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब जो है किशोर कुमार के गानों से कितना प्यार करते हैं, और मैं आज वो गाने आप सबके सामने लेकर आया हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मेरा भी शो अच्छा लग रहा है जानकर बहुत खुशी मिल रही है। विजय घटोल जी कह रहे हैं कि गाने बहुत अच्छे बजा रहे हो। फिरोज सिगनपुरिया जी जो है वो किशोर दा को हैप्पी बर्थडे कह रही है। सुनील गायकवाड़ जी जो है, विजय लक्ष्मी शेट्टी जी है, सरोज पाटिल जी ये कह रहे हैं गाने बहुत अच्छे बजा रहे हैं। और लिसनर्स में है नरेश शाह।

अंधेरी से और प्रतिभा शाह भी अंधेरी से हैं, उनके साथ में एक बहुत ही प्यारी सी रिक्वेस्ट आई है गोवा से अभय गोनेकर जी की, और वो कह रहे हैं कि एक गाना वो अपनी जो है मिसेस अमिता के लिए प्ले करना चाहती हैं, और वो गाना कौन सा है चलिए सुनते हैं। बहुत प्यारा गाना है, मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स हैं। तो अभय गोनेकर जी, ये गाना अमिता जी के लिए आपकी तरफ से।

दोस्तों, मेरे दिलों के पास आप सभी रहते हैं, मेरे दिल के पास में आप सभी रहते हैं। और देखिए, समय का पंछी बहुत तेज़ी से उड़ता है और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन ठीक 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11 बजे हम लेकर आएंगे नमस्ते भारत, और उसमें बात करेंगे हम आज एक बेहद अनूठे मुद्दे की। दोस्तों, आज 4 अगस्त यानी किशोरदा की जयंती पर आप भी उनके गाने गुनगुनाइए, खुशियां बांटिए और संगीत का जश्न मनाइए। भले ही 13 अक्टूबर 1987 को वो शारीरिक रूप से हमको छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी मखमली आवाज़ के ज़रिए वो आज भी हमारे हर दिल में ज़िंदा है। चलिए, मैं इस गाने के साथ अभी आपसे इजाज़त लेता हूँ, पर फिर मिलूँगा अगले शो में।

अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। भारत और उज़्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सौदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान यह बैठक हुई। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल द गवर्नेंस चैलेंज के 4th संस्करण की शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में देश के 30 प्रमुख प्रबंधन और लोकनीति संस्थानों के विद्यार्थियों को भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागी वर्ष 2035 तक महाराष्ट्र को नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने पर अपने सुझाव देंगे। और अंत में खेल समाचार। भारत के बैडमिंटन सितारे आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। यह टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। इसी के साथ समाचार समाप्त।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आरजे अनूप और स्वागत है आपका 107.1 FM रेनबो पर। और अब जिस शो की हम बात करेंगे वह नमस्ते भारत। तो तैयार हैं आप कुछ नई बात करने के लिए?

मन की लगन का क्या है, अपना तो सुनता ही नहीं है, ब्रेक फ्री चलता ही रहता है। पाप फिल्म का ये गाना राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में सुन रहे थे। अमजद इस्लाम ने इसे लिखा हुआ है और शाही का म्यूजिक है और ये फिल्म का नाम है पाप। जो कि लोग आसपास बहुत कर रहे हैं ना, और उससे किसी प्रकार से हमें बचते रहना चाहिए अपनी शांति के लिए। अब क्या कर सकते हैं, जिंदगी इसी चीज का नाम है। जो आपकी समस्या है वही मेरी है। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृणमयी मनाजा 107.1 FM रेनबो मुंबई पर। सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ के बाद एक पल अपने मन को चैन की सांस लेने दे देना चाहिए, है ना। भले ही बारिश ना हो रही हो, भले ही धूप हो आपके पास, आसपास जितनी भी धूप हो उसमें थोड़ी सी शांति के लिए भी इंसान पता है क्या होता है, एक चाय की टपरी में आप जाते हैं, ढेर सारा शोर होता है वहाँ पे, चाय के धुएं पे अलग अलग लोग अलग अलग तरह की डिमांड्स पे लग जाते हैं। अरे हमारे दो काले, अरे हमारे दो ब्लैक टी चाहिए, हमको ये चाहिए, अदरक वाला, हमारा दो कटिंग, हमारा बिना शक्कर वाला, ये जो अलग अलग तरह की मांगे होती है ना, अरे हमारा दो लेमन नींबू वाला नींबू चाय। तो इन सभी शोर के अंदर कहीं ना कहीं अपने मन के शोर को थोड़ा सा भूल जाते हो। 11:15 और इस वक्त आप सभी के मैसेजेस में देख रही हूँ 8657661071 पर। हाँ हाँ, कितने आदमी थे ये शोले वाला प्रश्न मुझे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही आपके उत्तर हम तक पहुँच चुके हैं। 5 लोगों के फोटोज आप भेज रहे हो, खेत में सब इकट्ठा सुन रहे हैं। चाय की टपरी हो, खेत हो या कॉरपोरेट हो, जहाँ कभी भी अभी इस वक्त जो है ऑफिस में फंसे हुए हो या फिर अभी भी रास्ते में ही वो पहुँचे ही नहीं हो, उस सारे तनाव को छोड़ दो और बस मेरे साथ मिलके एंजॉय करो 11 से लेके 12 बजे तक ब्रेक फ्री। मन क्या क्या कहता है मिलके सुनते हैं।

0: ये पास आकर दूर जाने वालों को ना अलग से मार पड़नी चाहिए,
1: है ना?
0: नौटंकी साला फिल्म का नाम है। फलक शबीर की आवाज में ये गाना सुन रहे थे। मेरा मन कहने लगा, आपका क्या कह रहा है मन, मुझे बताओ। 865-6-6-1-0-7-1 पर 8657-66-1071 FM रेनबो मुंबई।
2: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
3: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
2: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
3: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

क्या फिल्म थी, सही में है ना, कपूर एंड सन्स का ये गाना सुन रहे थे, अरमान मलिक और अमाल मलिक। और इस वक्त वैसे कपूर एंड सन्स की बात करें तो वो जो ब्रेक फ्री चलता ही रहता है उस परिवार में, झगड़ा कलेश, जैसे कि हम में से बहुत सारे लोगों के घरों में कभी ना कभी ऐसे तू मैं में तो हो ही जाती है। सबसे मज़ेदार सीन लेकिन पता है मुझे कौन सा लगा था इस फिल्म का, जब वो प्लम्बर आते हैं और वो मतलब काम कर रहे होते हैं बाथरूम में और सब लोग पैसे को लेके माँ बाप दो बेटे जो झगड़ा कर रहे होते हैं कि पैसे मुझसे ले लो या मुझसे ले लो, तुमसे कहाँ से आएगा, हमारे पास तो है ही नहीं ये वो। आखिर में बोलता है कि हो गया, सबने कहा चलो हो गया तो कितने हुए, तो वो प्लम्बर भाई साहब बोलते हैं अब इस बुरे वक्त में जो आपको ठीक लगे। सही है नहीं? अपनी आरजे मृणमयी मनजा के साथ सुन रहे हो ब्रेक फ्री 107.1 FM रेनबो पर।

एकदम सही कहा प्रणव ने कि मन तो वहीं जाता है जहां से जाना होता है। अब जितना उसको मना करते हैं वो सुनता थोड़ी है। जैसे अब हमने घड़ी को भी इतना मना किया लेकिन 11:30 तो हो ही गए। ये अगला गाना वैसे आ रहा है आपके पास, मन का रेडियो। थोड़ा सा मन का भी सुन लेना चाहिए, है ना, रेडियो पे क्या क्या चल रहा है। बाबरा मन वैसे सुन रहे थे शान और सुनिधि चौहान की आवाजों में। ये है 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृणमयी मनाजा।

0: ये है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मुंबई का सबसे पहला एफएम चैनल।
1: अब हिमेश रेशमिया ने बोल दिया तो क्या कर सकते हैं, है ना। अब तो गम को भूल के दर्द को दवा बनाना ही पड़ेगा, क्या बोलते हो।
2: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
3: इंटरनेट बैंकिंग,
2: मोबाइल बैंकिंग,
3: व्हाट्सएप बैंकिंग,
2: ईकेवाईसी,
3: एनईएफटी, आरटीजीएस,
2: आईएमपीएस,
3: कॉस्मोस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड,
2: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: सबसे मजे की बात पता है कौन सी है? जो ये गाना हम लोग अभी सुन रहे थे, मेरे साथ जो यहाँ पे आई हुई थी वो भी गुनगुना रही थी. कभी कभी ना सच में गाने के बोल में हम अपने आप को ढूंढ ही लेते. अब गाने ने क्या समझाया हमें कि बस जो हो गया वो तो हो गया. ये बात जितना आसान है कि जो हुआ सो हुआ, पीछे तो पलट नहीं सकते, अंडू बटन तो जिंदगी में दबा नहीं सकते, तो भूतकाल तो भूत बन चुका है पूरी तरह से. अगर कोई घोस्ट कर चुका है तो मेरी जान उसके आगे कर भी क्या सकते हो, है ना. अब भूतों के साथ तो खेलना है नहीं, तो वर्तमान में आना है और आगे का सोचना है. अभी इसी पल में जीना बहुत मुश्किल होता है. वो कहते हैं ना, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मेरी माँ तो हमेशा कहती है. लेकिन जब सच में दूध उबल के बाहर निकल जाता है बर्तन से, तो थोड़ा बुरा तो लगता है. सफाई भी तो खुद ही को करनी पड़ती है. लेकिन बात सही है, वापस तो नहीं डाल सकते ना बर्तन में, पतीले में दूध थोड़ी ना चला जाएगा. तो वही वाली बात है, दर्द को दवा बना के अपने बावरे से मन को खुशी की तरफ धकेलना पड़ता है. दुख से, ये जो घेरा है दुख का, उस चक्रव्यूह से थोड़ा सा ब्रेक फ्री करना पड़ता है. ये प्यारा सा गाना आ रहा है आपके पास थोड़ी सी मदद करने के लिए, थोड़ा सा वो प्यार वाला धक्का देने के लिए. बावरा मन, स्वानंद किरकिरे की आवाज़ में.

0: ये है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर मुंबई का सबसे पहला एफएम चैनल।
1: जिस पर इस पल भावरे से मन को संभालने का प्रयास जारी है, ब्रेक फ्री में 11 से लेके 12 बजे तक ब्रेक फ्री हमेशा सुनते हो 107.1 एफएम रेनबो पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृन्मयी मनजा। गाना बहुत ही करीब है मेरे दिल के। वैसे एक बार तो जैसे कॉलेज में इस पे डांस भी किया था मैंने, और गाने के लिरिक्स जब इतने दिल के करीब होते हैं, प्यारे से होते हैं, बारीक महीन हर एक शब्द में कितनी धड़कनें, कितनी सांसें, कितनी करवटें, कितनी निंदिया जो है छुपी हुई होती है। मन तो बावरा सा है ही, हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, फिल्म का नाम है उसी फिल्म से ये गाना। हमारा बावरा सा मन तो बहुत कुछ चाहता है, धीरे धीरे घूंघटा हटा कर मुस्कुराना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है, पर कहाँ ही हो पाता है। लेकिन यूं ही इसी कदर साथ रहते हम लोग 8657661071 पर 8657661071 म्यूजिकली योर्स।

मन की बातें कर रहे थे हम ब्रेक फ्री पर, और बात सही है जैसे आपका मैसेज आया हुआ है अभी कि मन बहुत खुश है क्योंकि बारिश हो रही है और मौसम बड़ा सुहाना है, खुशी से झूमेंगे ही। क्या बात है लड़कियों, ऐश कर रहे हो, झूम रहे हो, नाच रहे हो बारिश में। यहाँ तो धूप है, वैसे अलग अलग जगह में अलग अलग हाल है क्योंकि पूरी दुनिया से इस वक्त सुन रहे हो हमें 107.1 FM रेनबो पर। वैसे तो FM मुंबई में ही है लेकिन न्यूज ऑन AIR ऐप है जिससे कि जहां भी होते हो सुन ही लेते हो, अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ मिलकर। वैसे सीधा प्रसारण एकदम लाइव सुनने में मजा भी अलग होता है, और ये जो चर्चा हमारी होती है चाय के साथ साथ वो भी अलग लेवल की होती ही है। अब ऐसा है, थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि दर्द को दवा बनाकर एटीट्यूड हमें हिमेश रेशमिया सिखा रहे थे, है ना, और हमारा जो बावरा समन है इस पूरी सयानी भीड़ में एक बावरा सा हाथ एक साथ चाहता है कि किसी तरह मिल के नेविगेट कर ले, जैसे मैप पकड़कर रास्ता ढूंढते रहते हैं ना सयानी सी भीड़ में, ठीक उसी तरह जिंदगी में भी ब्रेक फ्री चलते रहने के लिए साथ तो चाहिए होता है कभी कभी, कभी घर वालों का, कभी दोस्तों का, कभी किसी फरिश्ते का, कोई अनजान ही क्यों ना हो। कभी कभी रास्ते में लोग टकरा जाते हैं, थोड़ी देर के लिए मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है और फिर सफर आसान हो जाता है ना। ठीक इसी तरह अपने जज्बात, अपने दिल का हाल मुझे भेजते रहो 865-766-1071 पर 865-766-1071। फिलहाल जो है मन को भगाते हैं, भाग तो रहा है वैसे भी, थोड़ा सा और भागने देते हैं। फिर ना मैं आपसे पूछती हूं ये एटीट्यूड वाला सवाल, क्या लगता है आपको जब मन कुछ करे और

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

भागेरे मन में ये गाना सुन रहे हो वैसे चमेली फिल्म से, सुनी थी चौहान की आवाज में, इरशाद कामिल ने लिखा है और संदेश साथ है।

करीना कपूर के मन के साथ साथ हम सबका मन भी बहक रहा है. चवेली में वैसे थे करीना और साथ राहुल बोस. बड़ी प्यारी सी फिल्म. आगे बढ़ते हुए अभिमानी मन को वश में करने का प्रयास प्रयास ही ब्रेक फ्री चल रहा होता है ना. 11:55 हो रहे हैं. ब्रेक फ्री सुन रहे हो अपनी आरजी मृणमयी मनजा के साथ. क्या बोलते हो अभिमानी मन को कैसे कैसे रोका जाए.

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में छात्र आंदोलन, राम मंदिर चढ़ावा और अन्य मुद्दों पर गतिरोध जारी रहा। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक तथा राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज सदन में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर श्री स्टालिन ने अभिनेत्री त्रिशा पर खुली सभा में अपमानजनक टिप्पणी दी थी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में 17 वर्षीय तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। राज्य के शिक्षा क्षेत्र में महर्षि कहलाए जाने वाले डॉक्टर डीवाई पाटिल का आज कोल्हापुर में 90 की उम्र में निधन हो गया है। वे त्रिपुरा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके थे। नवी मुंबई में पुलिस ने 41,60,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ बरामद कर 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया है कि उसके पास से 43,80,000 रुपए मूल्य का 338 ग्राम हैश ऑयल और 7,80,000 रुपए मूल्य का 78 ग्राम हाइड्रो गांजा बरामद किया गया है। इसी के साथ समाचार समाप्त।

नमस्कार, हेलो हेलो, वापस आ चुके हो समाचारों के उस पार। एफएम रेनबो मुंबई ही सुन रहे हो, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृण्मयी मनजा। ब्रेक फ्री के बाद अब वक्त है म्यूजिक कैफे का। ये है आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल, सीधा प्रसारण आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव यानी कि 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। और अब क्योंकि दोपहर के इस प्रहर म्यूजिक कैफे के शटर खोल रहे हैं तो म्यूजिक तो आएगा ही।

सुपरस्टार नहीं, मतलब फिल्म का नाम सुपरस्टार है जिसका गाना सुन रहे थे वैसे, हमजा की आवाज में शबीर अहमद और शमी टंडन। और म्यूजिकली योर्स, हम आपके साथ हैं। तो म्यूजिक के साथ साथ अब जब टेबल पे बैठ ही चुके हो आराम से, तो थोड़ी बहुत बातें भी हो जाए, है ना। वैसे गाना जो है थोड़ा सा अरबिक के साथ मिला जुला है, तलबत जो है, यानी कि अगर हम कुछ ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक वैसे जैसे म्यूजिक कैफे में बैठ के ऑर्डर करने का दिल तो कर रहा है आपका, खाना भी आएगा वैसे। लेकिन पहले जो बात कर रहे थे कि जब इतना ज़्यादा चाहते हो किसी को, जब इतना स्नेह है कि दिल जीत ही लिया है, ऐसी वाली बात है, थोड़ा सा सूफी और रॉक का फ्यूजन वैसे सुन रहे थे, तो उस कदर चाहने के बाद भी, खास तौर पे ये जो प्यार मोहब्बत का मामला होता है, यहाँ तो डेटिंग की दुनिया में देखें या कभी भी ज़िंदगी में ऐसे ही किसी से टकरा भी जाओ, तो ये इतना आगे पीछे होता है ना, कि कभी इजहार हो रहा है तो कभी इनकार हो रहा है, कभी बोल रहे हैं कभी डर जा रहे हैं, कभी कभी तो डियर जिंदगी की आलिया वाला हाल है कि सामने वाला कहीं मना ना कर दे, उससे पहले कहीं हम ही ना मना कर दे। ये जो मन चला सा मन न जाने कहाँ चलता रहता है, और एटीट्यूड लाने के लिए जैसे हिमेश जी बोल ही रहते ना, वो वाली बात तो सही है, मन कैसे एकदम सख्त होके आगे बढ़ भी जाता है, और कभी कभी तो अच्छे लोगों से मुलाकात हो भी जाए तो भी इतना डर चुका होते कि इतनी बड़ी बड़ी दीवारें अपने इर्द गिर्द बना चुके होते कि फिर तो खुद ही अपने में मस्त मन आगे निकल ही जाता है ना, ऐसा भी होता। और जब कोई बात कर रहा हो और अचानक से ना करे, तभी क्यों उसका एहसास होता है, क्यों क्यों क्यों है मनोविज्ञान इतना दिलचस्प, क्या बोलते हो मन चले से मन के बारे में।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: सुदेश भोसले की आवाज थी, साथ कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, और ये गाना सुन रहे थे बाबुल से, समीर के लिरिक्स से, आदि श्रीवास्तव का म्यूजिक।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000,
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
0: क्या बात है, मुंतजर थे ही, है ना, यानी कि इंतजार कर रहे थे, एकदम वेट कर कर के लखते जिगर का क्या हाल हो गया, भूख लग रही होगी, है ना। वैसे भी दोपहर का समय है। लखते जिगर वैसे पता है क्या होता है? जिगर का टुकड़ा, जिगर यानी लिवर, जो कि दोबारा ग्रो भी हो सकता है, यानी कि दोबारा बन सकता है। तो कितनी मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं, ऐसे आम तौर पे आप बोल के दिखा दो, ये पूरा पोएट्री है, यानी कि पूरी कविता है कि किस कदर चाहते हैं सिर्फ दिल का टुकड़ा नहीं, जिगर का टुकड़ा भी होता है। और वहीं चले हमारे जिगर को जो जो चीज़ें पचाने के लिए मुश्किल होती है, या हमारे पेट को, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो जो बुरा होता है वो तुम खाते ही रहते। जैसे ही दोपहर का समय हो, म्यूजिक कैफे में बैठे हो, तो थोड़ी बहुत खाने पीने की बातें भी तो होंगी। वैसे भी फिलहाल हाल ऐसा है कि हर किसी का रसोई घर चमक रहा है मुंबई में, नहीं?
5: भूख लगी जोरों की, भूख लगी मुर्गे की बांग हमें कोयल की, भूख लगी

आज का प्रबंध कैसा है बजरंगी भाईजान का? ये गाना सुन रहे हो 107.1 FM रेनबो मुंबई पर अपनी आरजे मृन्मयी मनजा के साथ। ओह, चिकन ने कुकड़कू कर दिया क्या? वैसे पता है भाई साहब, जो तो सफाई चल रही है उससे पता चला क्या कि चिकन लॉलीपॉप का रंग लाल नहीं होता। पता था? नहीं पता था ना, तो वही वाला हाल है। मुझे रंग दे कहने वाले बहुत, मतलब हम लोग इतने सालों से खाते रहते हैं, हमको पता भी नहीं होता। लेकिन अब जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, जो साफ सफाई, लोग मुंबई में इस कदर रेस्टोरेंट्स वगैरह जो सफाई कर रहे, घर पे भी वैसे स्वच्छता रखनी चाहिए रसोई घर में, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया की फीड जैसे वायरल हो ही रही है, सब लोग लिख रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लाल रंग का नहीं आ रहा है बटर चिकन और आ रहा है पीले रंग का। तो मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो गया, मतलब सच में नहीं मानोगी तुम। मैंने भी फिर ऑर्डर किया ना चिकन टिक्का मसाला, तो पीले रंग का आया है। मतलब 15 साल में पहली बार मुंबई में क्या हो रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, हानिकारक वस्तुओं से बच के रहना चाहिए। जितना जहर तो हम लोग खा ही चुके हैं, अब उसको कैसे पचाएंगे पता नहीं। हमारा जिगर का टुकड़ा दोबारा ठीक होगा नहीं होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। अभी थोड़ी देर में वैसे सुनोगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 12:30 से लेकर 1 बजे तक। उसके बाद 1 बजे होगा मराठी समाचार और उस पार हिट एंड हॉट में आप सभी की बातें, गाने सब शामिल करेंगे 8657661 पर 8657661।

1071 पर लिख के भेजो अपना गाना, प्यारी सी बात, संदेश लिखना बिल्कुल मत भूलना, फिल्म का नाम भी मत भूलना, ठीक है? सुनते रहो 107.1 FM रेनबो मुंबई।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
1: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
1: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्लेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
2: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
2: जी
1: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
2: अजी जी आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
1: जी
2: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
1: जी तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ तो संकेत दीजिए।
2: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओं क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
1: या फिर श्रोताओं क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
2: अजीत जी यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है तो वो एकदम सही है। जी हाँ हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
1: विमलेश जी यदि सरल शब्दों में कहें तो एआई या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
2: जी
1: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
2: जी अजीत जी आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
1: और तो और विमलेश जी इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
2: शिक्षा के क्षेत्र में

0: एआई विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
1: और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है
0: जी।
1: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है
0: जी।
1: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
0: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं
1: जी।
0: हर नई तकनीक की तरह एआई के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी
1: जी।
0: एआई कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे, लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए
1: जी। बिल्कुल सही श्रोताओं, दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती
0: जी,
1: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति
0: जी।
1: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह एआई से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है
0: जी,
1: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
0: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि एआई सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं
1: जी।
0: तो अब बात करते हैं कि एआई का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप एआई से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें
1: जी, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि एआई से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें
0: जी।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात, एआई पर आश्रित ना हो जाएं।
0: बिल्कुल,
1: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं
0: जी। हाँ श्रोता मित्रों, एआई का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है
1: जी।
0: एआई हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी
1: जी। हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है
0: बिल्कुल,
1: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है
0: जी।
1: इसी प्रकार एआई भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओं, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
1: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921।

0: ट्रॉपिक्स में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
1: चलो चलो
2: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार सर।
3: नमस्कार। और इतने सारे बच्चे, आजा। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
4: सर मैं इशिता। मैं हूँ चेताली।
5: मैं शुभेंदु।
6: और मेरा नाम है इंदु।
7: और मैं सोमेश।
3: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
4: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
3: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
5: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
7: सर फिर क्या होता है?
3: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
7: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
3: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो, जैसे
8: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है। बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
4: वाह, कितनी सुंदर बात है।
3: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो, जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो, एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
9: पौधा।
3: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
9: उल्टा?
3: हाँ, उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
7: फिर क्या हुआ?
3: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
5: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
4: जी सर।
3: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
4: रसपान कैसे करते?
3: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
4: जी सर।
3: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
4: अच्छा, अब समझ आया।
3: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
9: जी सर।
4: यहाँ तो कितने सारे पत्ते, बीज, पौधे के तने रखे हुए हैं। अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है।
10: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
7: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
11: देखो इतना बड़ा पेड़।
12: अरे उधर देखो, सूखे पत्ते भी हैं।
13: अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
4: और ये मशीन क्या है? चलो चलो सर से पूछते हैं।
3: इसे कहते हैं

0: सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप।
1: माइक्रोस्कोप,
0: हाँ। अब इसका कमाल देखो। इशिता तुम इधर आओ बेटा। हाँ देखो
2: जी सर।
0: हाँ देखो, अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ आओ देखो, देखो बेटा देखो, इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है।
1: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
0: शाबाश।
1: हाँ, नलियां तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
2: मुझे भी देखना है। सर मैं भी देखूं?
0: हाँ आओ आओ,
1: मुझे भी देखना है।
0: देखो क्या दिखाई दिया।
1: इसमें तो बहुत सारी नलियां हैं।
0: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
1: पाइप?
0: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: अब देखो, जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
1: सर, पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
0: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
1: नहीं सर।
0: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ, अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्र तुम देखो, क्या दिखाई दिया।
1: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
1: जी सर।
0: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ, शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा। इशिता तुम बताओ।
2: सर, टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
0: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं।
1: सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
0: हाँ।
1: लेकिन सर, ये तो जहरीली होती है।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
2: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
0: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है।
1: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
3: हम भी नहीं होते।
0: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत?
1: बहुत अच्छी।
0: अब से एक काम जरूर करना।
1: क्या सर?
0: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना
3: थैंक यू प्लांट, थैंक यू ट्री।
0: शाबाश।
4: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
5: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी, मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो मुंबई और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृणमयी मनजा। प्रायोजित कार्यक्रम के उस पार थोड़ा सा ही समय है हमारे पास, उसके बाद आप सुनोगे मराठी में समाचार और समाचारों के उस पार हिट एंड हॉट। ये वो कार्यक्रम है जहां आपके संदेश हम शामिल करते हैं और आपका मैसेज मैं पढ़ रही हूं जो आपने लिखा हुआ है जलंधर से, गोराया से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संदीप, ज्योति, मन्नत, भरत और कमल की कमल साहनी कि हम आपका नहीं करेंगे, सिर्फ महाराष्ट्र वालों का करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। FM रेनबो मुंबई जो है पूरी दुनिया सुनती है न्यूज़ ऑन AIR ऐप के ज़रिए, तो आपका संदेश भी हम तक पहुंचता है। अगर आप मैसेज करोगे हमारे समय में तो हम ज़रूर उसको शामिल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी किसी किसी का रह जाता है, बट ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ते तो हम हैं ही। जो इतने प्यार से आप भेजते हैं तो आप हमें सुनते रहें, और अगर अभी तक नहीं सुना है तो नंबर तो आपको बता ही दूँ, 8657।

स्वागत है आपका मराठी समाचार के उस पार। सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल, सीधा प्रसारण आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर डीआरएम पे भी सुन सकते हो। और बिल्कुल सुन रहे हो पूरी दुनिया से। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ महाराष्ट्र वालों को फेवर करते हैं, जैसे आप लोगों ने मैसेज भेजा है। सभी के संदेश मैं पढ़ती हूँ। 8657661071 है नंबर हम तक पहुँचने का। तो व्हाट्सएप कर सकते हो फिल्म का नाम, गाने का नाम, लेकिन समय बहुत कम है और प्यार सबका जो है मैसेजेस बहुत सारे हैं, तो पढ़ेंगे जरूर। लेकिन गाने शुरू करते हैं बिना किसी देर के अभिजीत की आवाज में ये रिक्वेस्ट।

अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

1:13 हो रहे हैं, डॉन का गाना सुन रहे थे किशोर दा की आवाज में। आज उनकी जयंती है तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी की। जो मैसेजेस हैं वो भी पहुंचे हैं, सुबह 8 से 11 भी किशोर दा के ही गाने आप सुन रहे थे अभी। लेकिन पूरा मिक्स बैग है हमारे पास, बहुत सारे लोगों ने नए गाने जो है रिक्वेस्ट किए हुए हैं, कुछ कुछ हैं जिन्होंने किशोर दा के गाने अनुरोध किए हुए हैं। 8657661071 पर 8657661071। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृणमयी मनजा। और सुबदा अंजू आपको भी गुड मॉर्निंग का गुड आफ्टरनून हो गया, सुबह से इन लोगों ने मैसेजेस किए हुए हैं हमें सभी के सभी। थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं, तो दो टीम्स बनाते हैं आज, है ना। तो जो लोग अपना नाम चाहते हैं वो तो मतलब मैसेजेस कर ही रहे हैं, और जो अनामिका वाली टीम है जो नाम नहीं चाहते बस गाने चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं।

सकते हैं कि हम लोग टीम अनामिका से हैं। तो अनजान जैसे ये गाना सुन रहे थे, वैसे लिरिक्स बोल लिखे हैं अनजान ने। सोचते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, वही वाली बात है। कुछ लोग अपना नाम नहीं भी चाहते, ऐसे भी लोग होते हैं। और इतने सारे मैसेजेस के बीच में फिर हमें समझ नहीं आता कि किसके नहीं लेना है, तो वो अच्छे से बता देना, नहीं तो गलती से चला जाएगा। ये वैसे हमारे पास है।

बातों की रेस में आ चुके हो मेरी जान। हिट एंड हॉट सुन रहे हो इस वक्त, हिट एंड हॉट गानों के साथ साथ हिट एंड हॉट बातें भी आपकी। वैसे प्रमोद हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये गाना मिलने की, तुम कोशिश ना करना, ये है दिल का क्या कसूर फिल्म से। कुछ आपके जो है बातें मैं पढ़ लेती हूँ, नहीं तो कैसे, वो नहीं होता एग्जाम के पहले जब बहुत सारी पढ़ाई बाकी रह गई हो और कोई कहीं छूट ना जाए सब्जेक्ट। हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है सुबदा, बिल्कुल। नवी मुंबई से धनंजय, आप आए तो बाहर आई मृन्मयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आए हाय, हम तो यही चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बाहर आ ही जाए। हमें प्रदीप ने भेजा हुआ है सुविचार कि एक नई सुबह एक नई दुआ के साथ आए तो क्या बात होती है। बिल्कुल, संजय दर्शन सुनना चाहते हैं मंडोले तंडोले या फिर मन

दिया डोलारे डोलारे। मृणमयी जी गुड मॉर्निंग, इन्होंने सुबह से भेजा हुआ है, हमारे साथ हैं। तो ऐसा है कि सुरेश वैष्णव लिखते हैं कि गाने बहुत ही अच्छे हैं, 12:11 पे उन्होंने ये हमें भेजा हुआ था। ये वक्त होता है जब हम सभी के संदेश शामिल करते हैं और दिग्दर्शन और कविता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये प्लेलिस्ट बहुत पसंद कर रहे हैं और साथ सुनना चाहते हैं। फिल्म जंजीर का गाना है यारी है ईमान मेरा, ये सुनना चाहते हैं। और फिर विट्ठल लिखते हैं कि चलो चले मितवा मूवी, नायक जो है ये अहल्या नगर से, इन्होंने ये मैसेज भेजा हुआ है। धीरज चौहान जो है हमारे चिकन की येलो मसाला, जो हमारी बात हो रही थी कि बहुत बहुत बढ़िया लगा उनको ये वाली बात कि रंग जो है वो उसमें ना रहे। तो और आपने माफ़ी सॉन्ग रिक्वेस्ट किया हुआ है प्रीतम एंड पेड्रो से, ये हैं आकांक्षा सिन्हा, लिखती हैं अहमदाबाद से कि 6 साल से हम सुन रहे हैं FM रेनबो और क्या बात है, आपका मैसेज वैसे मैंने पहली बार देखा, बहुत शुक्रिया, फीलिंग ग्रेटफुल। बिल्कुल बिल्कुल, इसी प्यारे से भाव के साथ सब लोग थोड़े से शुक्रगुजार हो जाते हैं।

मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, वादा तो टूट जाता है। आए हाय, आप लोग तो टीम ए टीम बी, क्या लोग एक दूसरे के पीछे ही पड़ गए हुआ है कि मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि हमारा रह गया, हम क्या करें, हमारा नाम नहीं आया। आपको बता दूं, दूसरी तरफ से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या बात है, इनको बहुत तवज्जो दिए जा रहे हैं। पढ़ रही हूँ मैं सभी के मैसेजेस, ऐसी बात नहीं है। ये वैसे बड़ा ही प्यारा सा मुझे मैसेज भेजा हुआ है प्रणव शिंदे ने, लिखते हैं कि आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 एफएम मशहूर और बेहतरीन आरजे, अरे थैंक यू मृन्मयी मनेजर जी की दिलकश आवाज़, सादगी और बेहतरीन अंदाज सबको भाता है, मस्का आपने बहुत अच्छा लगाया है लेकिन फिजा में जैसे कोई मीठा सा सांस बचता है जब एफएम रेनबो पर ऐसा अंदाज सजता है, क्या बात है। बहुत मतलब सही लिखे हो कहीं से, मतलब लग नहीं रहा कॉपी पेस्ट आज बहुत ध्यान से मैसेजेस भेजे गए हैं लोगों के, आपकी आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। चलिए इतनी तारीफ मैं नहीं करती, बाद में पढ़ूंगी, लेकिन बहुत अच्छा सही आपने भेजा हुआ है। गाने आप सुनना चाहते हो वैसे, ये मैसेजेस अभी आए हैं, पहली दफ़ा इस दिल में भी, ये हलचल जो फिल्म आपने रिक्वेस्ट की है ना, 31 साल पूरे हो रहे हैं उसके, और दूसरा वाला जो हलचल है उसके भी गाने, वो वाला सीन है तो मैं आपके लिए हर दिल जो प्यार करेगा वो 26 साल पूरे हो रहे उसका मैं प्ले करती हूँ। वहीं वैद ही बिल्कुल मैं देख रही हूँ आपका मैसेज भी, और फिरोज अपने पूरे ग्रुप के साथ बने हुए हैं, किशोरदा के कुछ गाने हमने लगाए हैं। और वहीं हमारे पास और एक मैसेज भी आया है कि सुबह से किशोरदा के गाने चल रहे थे, जयंती है आज उनकी, तो ऐसा ना करिएगा, रिक्वेस्ट आवर में दूसरों की भी रिक्वेस्ट शामिल करिएगा, नए गाने भी। बिल्कुल बिल्कुल, सभी की भावनाओं को हम शामिल करेंगे। अभी थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे मराठी समाचार, 10 मिनट के बाद मिलो तो सही, फिर ये जो मिक्स्ड बास्केट है जिसमें सब है सुनेंगे।

स्वागत है आपका मराठी समाचारों के उस पार हिट एंड हॉट में। आ चुके हो 107.1 FM रेनबो मुंबई पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृणमयी मनजा। थोड़ा सा ही वक्त है तो आगे बढ़ते हुए ये आपकी रिक्वेस्ट। सुबह 11 से लेकर दोपहर 2 बजे तक का साथ मेरा और आपका, और इस समय आपकी बातें शामिल होंगी ही

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो हो, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

हे हर दिल जो प्यार करेगा से ये गाना वैसे सुन रहे थे और आप सभी की बातें भी थोड़ी सी शामिल कर लेती हूँ जहाँ तक हम पहुँचे थे। ये सुनना चाहते हैं वैसे दिल दीवाना न जाने कब से यशवंत अड़मुटे धाराशिव से, और ये भी हमारे साथ सुबह से बने हुए हैं। मेहर हैं, मेहर का पूरा परिवार जो है ममता कीर्ति भूमिका सत्य पे सत्ता से ये गाना सुनना चाहते हैं मौसम मस्ताना हिट नॉट में, और किशोरदा के गाने और किशोरदा के नहीं नए वाले गाने के दो टीम्स के बीच में ना मेरा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग वाला हो चुका है इस वक्त। तो गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी है, प्रमोद है डूडी, और ये हमारे पास संदीप का मैसेज आया हुआ है। उसी के साथ साथ नितिन स्वामी है रोली से, म्यूजिक कैफे बहुत अच्छा रहा, हिट एंड हॉट भी अच्छा ही होगा, ये उन्होंने पहले से भविष्यवाणी चलो बहुत ही प्यारी सी कर दी है। मृण्मयी जी हिट एंड हॉट में आज क्या मतलब सुनेंगे सभी के जो गाने हैं। वैसे सबसे मज़ेदार बात है कि जो लोग एक दूसरे से जेलस हो रहे हैं वहीं दूसरे उन्हीं के गानों के चॉइसेस पसंद भी कर रहे हैं।

अब क्या करे, कुछ तो हो ही जाता है ना। कुमार सानू की आवाज के साथ जुड़े हुए हो हिट एंड हॉट में, मैं हूँ आपकी आरजे मृण्मयी मनोजा। ये प्यारा सा जो है संदेश, अब थोड़ी सी अपनी तारीफ कर भी लेते, बहुत मतलब अच्छा है, और इसलिए मैं समझ रही हूँ कि आपने पोएम बना के लिखा है, तो फिर आपका ये बोलना कि आपका आया नहीं बात एकदम सही है। गीतों का चयन आपका दिल का हाल बयां करता है, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, आपको नहीं समझ आना चाहिए वैसे हम आरजे का हाल क्या होता है। हर एक नगमा सीधे धड़कनों में उतरता है, एफएम रेनबो पर सजती है आपकी महफिल, उसे सुनकर मिल जाती है हर मुसाफिर को मंजिल। आवाज का जादू है आपका, बातों में गहरा सा एहसास है। मृण्मयी जी, आपका ये अंदाज सचमुच बेहद खास है। रेडियो पर गूंजती है सदा आपकी ये प्यारी सी तान, आप ही तो हैं एफएम रेनबो मुंबई की असली जान। क्या बात है मेरी जान, थैंक यू सो मच। घर वाले सुन रहे हो ना, जब भी डांटते रहते हो कभी कभी ऐसी भी मतलब तारीफ आ जाती है तो यही बात है। अभी जल्दी से मैं कोशिश करती हूँ ताकि कोई ना रहे, तो ये फास्टेस्ट फिंगर्स फॉरवर्ड वाली बात हो गई कि जितनी जल्दी बोल सकते हैं। जो जॉन है हमारे साथ, रोजी पर्ल एंड विलिस डिकोस्टा, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं कहाँ से, और हाँ वैसे वो लिखते हैं रेस्पेक्टेड होस्ट दी, बड़ा प्यारा सा आपने लिखा हुआ, ये वैसे मुझे पहले कभी किसी ने नहीं लिखा। बहुत ही सुंदर गाने आपको पसंद आए हैं, और एक प्यारा सा मैसेज है हमारे पास कि कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा, प्रस्तुति आपको बहुत अच्छी लगी। वहीं आगे बढ़ते हुए अभिजीत ने हमें भेजा हुआ है संदेश सरिता के साथ, प्रणीता है प्रिंस और उनके बच्चे जो हैं लाडले से टुकटुक भी उनके साथ बने हुए हैं। डॉक्टर स्नेहा सिसोदिया ने हमें वॉइस नोट भेजा हुआ है, मेरी जान वॉइस नोट तो मैं ऑन एयर कैसे सुन सकती हूँ बताओ, ऑन एयर आप लोगों के पास ही होती हूँ ना, तो जो लिखित में चिट्ठियाँ भेजते हो व्हाट्सएप पे बस हम वही सुन सकते हैं। एक और गाना चलाते हुए आपके पास वापस आती हूँ।

0: उड़ने का वक्त वैसे आ चुका है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। सेक्टर 67 से, वैसे चंडीगढ़ से हमें मल्होत्रा परिवार से टीडी हैं, ऋतिक हैं और प्रतीक हैं, अनिल शर्मा हैं, जयवीर सिंह और अंदीप, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नाम नहीं भी लिखा है हमारे अनामिका वाले टीम से, और वहीं नाम वाले में नितिन, बिल्कुल आप सभी का मैंने देखा है, स्वर्ण का पूरा परिवार है, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अभी देखिए वक्त बहुत कम है, जाने का समय सबका नहीं हो पाएगा हिमानी, पर महेश व लक्ष्मी आप सभी के देख रही हूँ, जो भेज चुके हैं, जो नहीं भेज चुके हैं, मुस्कुराते रहें।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Parliament remains gridlocked as repeated protests by opposition members over various issues disrupt proceedings in both houses. Flood situation continues to improve in Odisha as water levels in major rivers recede. Tamil Nadu opposition leader Udayanidhi Stalin taken into police custody over controversial remarks.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाघ जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तान

सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी। होर्मुज जलडमरो मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की

0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
4: MSMEs have actually benefited.
5: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे newsonair ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया।

0: गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
1: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
2: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
3: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है, क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम

0: 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज़ दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज़ दलदमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

कितना खूबसूरत गाना था ना ये। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ आरजे स्वेच्छा और आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। वैसे गाना सुन के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वो भी समझ आ जाएगा। समय हो रहा है ठीक 5:07 और कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में। अच्छा, कभी कभी ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर ही ऐसा लगता है कि अरे ज़िंदगी को इतना गंभीर होकर जीने की क्या ज़रूरत है। आज हम ऐसे ही एक शख्स की बात करेंगे जिनकी आवाज़ में शरारत भी थी और मस्ती भी, प्यार भी था और ठहराव भी। हाँ हाँ, मैं बात कर रही हूँ किशोर कुमार जी की। जी हाँ, जिनको लोग प्यार से किशोर दा भी कहते थे। किशोर दा को सिर्फ एक गायक कहना उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो गाते थे, एक्टिंग भी करते थे, संगीत बनाते थे, फिल्में बनाते थे, और सबसे ख़ास बात, वो जो भी करते थे उसमें अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेते थे। उनकी आवाज़ सुनकर लगता है जैसे कोई कह रहा हो, भाई परेशानियां तो चलती रहेंगी, तुम पहले थोड़ा मुस्कुरा लो। और यही हमें ये गाना सुन के फील होता है। और शायद यही तो लव यू ज़िंदगी का भी मतलब है ना, ज़िंदगी को थोड़ा खूबसूरत बनाना, क्रिएटिव बनाना, हमारे अच्छे पलों को महसूस करना और दुख में खुद को संभालना। इसीलिए शायद किशोर दा के गाने इतने अपने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी ज़िंदगी को किसी एक रंग से नहीं भरा, उन्होंने ज़िंदगी के हर रंग को अपनी आवाज़ दी है। तो आज आपके मूड का रंग क्या है ये आप तय कीजिए, और अगला गाना शायद उसी रंग को थोड़ा और खूबसूरत कर दे। तो चलिए आज की शाम की शुरुआत करते हैं उस आवाज़ के साथ जिसने लाखों लोगों को मुस्कुराना सिखाया।

समय हो रहा है 5:23 और ये गाने सुन के तो मैं कहीं अलग दुनिया में ही चली गई हूँ, अलग दुनिया में ही खो गई हूँ। और जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उन्हें भी इतने ज़्यादा ये गाने पसंद आ रहे हैं, क्योंकि किशोर दा के गानों में है ही ऐसा जादू कि जो सुने वो बस अपनी दुनिया में खो जाता है। वैसे किशोर दा के गानों की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? वो सिर्फ एक इमोशन नहीं है। कभी कभी वही आवाज़ आपको छेड़ती है, कभी प्यार में डुबो देती है, कभी अकेलेपन में साथ भी बैठती है। तो सिर्फ एक इमोशन नहीं, अनेक इमोशन है, जैसा कि हम हर गाने में सुन रहे हैं। कभी मस्ती है, कभी प्यार है, कभी अकेलापन है। तो कई बार ना दुनिया जिसे सिर्फ ऐसा सोचती है, कई जैसे किशोर दा के साथ क्या हुआ था कि उन्हें ना लोग कई तरह के नाम देते थे। मतलब कभी पागल पागल उनके काम को लेके बोलते थे कि पागलपन है, सरफिरा है, क्रिएटिव है, जीनियस है। तो उन्हें ना दुनिया ने बहुत सारे

नामों से बुलाया है, बहुत सारे नाम दिए हैं, बहुत सारी उपाधियाँ दी हैं, लेकिन उन्हें ना इन सब बातों से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छे से, ना ही बहुत ज़्यादा कोई कुछ भी बोले उससे, वो उनको जो अच्छा लगता था वही करते थे, और वो उनके काम में दिखता भी था, और बाद में वही चीज़ उसकी सब तारीफ़ किया करते थे, सब उसी काम को ग्रेट और जीनियस कहते थे। बनते वक्त उस चीज़ का इतना समझ में नहीं आता है, वो चीज़ें इतनी निखर के नहीं आती हैं, लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आता है, जब चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तब बिना जवाब के जवाब सबको मिल जाता है, जैसा कि लाइफ में भी होता है। पर लव यू ज़िंदगी पे आप हमारे साथ बने रहिए। किशोर दा के जन्मदिन को आज हम ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे, उनके गानों के साथ, उनकी अमर लेगेसी के साथ जो वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो चलिए इसी बात पे सुनते हैं अगला गाना।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

ये गीत सुनकर ऐसा लगा कि बस कहाँ खो गए हो। किशोर दा के म्यूज़िक का जितना ही

उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का म्यूज़िक बनाया है, और जिस हिसाब से उनकी क्रिएटिविटी थी वैसे ही उनके कहानी किस्से हुआ करते थे। तो कई बार वो अपनी बात मनवाने के लिए जिस चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट नहीं था, जो काम उन्हें नहीं करना होता था, तो वो अपने मन का वो काम करते थे जिससे वो काम उन्हें ना करना पड़े। जैसे कई बार जैसे आनंद फिल्म के लिए काका से पहले उनको उनको चूज़ किया गया था कि वो आनंद का किरदार निभाएंगे, लेकिन उनको किसी अपने पर्सनल रीज़न की वजह से वो काम नहीं करना था। तो उन्होंने लुक टेस्ट के लिए अपना पूरा सर शेव करवा लिया और उसके बाद वो लुक टेस्ट के लिए गए, जिसमें वो देखते ही रिजेक्ट हो गए। तो जो उन्हें नहीं करना होता वो उनका ना करवाने का अंदाज भी उनका खुद का ही था। तो ना कोई बात ना कोई बहस, बस अपने तरीके से काम के लिए मना कर दिया। तो ऐसे ही उनके कई किस्से हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। उनकी शर्ट फटने के बाद भी उन्होंने गाना जारी रखा और बिल्कुल किसी को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि कुछ प्रॉब्लम हुई हो। उस माहौल को, उस मोमेंट को उन्होंने बिल्कुल अपना बना लिया, जैसे कि वो हमेशा करते थे। वो किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार नहीं करते थे, वो हमेशा जो मोमेंट होता था उसको परफेक्ट बना लेते थे। तो ऐसे लेजेंडरी सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, सब वो सब कुछ ऐसे ही नहीं थे, वो इतने ज़्यादा क्रिएटिव और जीनियस थे और वो अपने हर काम में बेस्ट थे। तो इसी के साथ हम अब अगला गाना सुनते हैं, और तब तक आप सोचिए आपको कोई उनकी लाइफ का बिहाइंड द सीन या कोई किस्सा ऐसा पता हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सुनिए ये खूबसूरत सा गाना।

जैसे मैंने क्वेश्चन किया था कि आप लोगों के पास यदि कोई बात हो या कोई जानकारी हो, कोई एक्सपीरियंस हो, तो आप लोग ज़रूर बताइए किशोर दा के बारे में। तो अजय साखरे जी ने बताया है कि किशोर दा खंडवा से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में गए थे और वो जिस हॉस्टल के रूम में रुके थे, वहाँ रहते थे, उसको MP गवर्नमेंट ने यानी मध्य प्रदेश सरकार ने स्मारक घोषित कर दिया है। वाह, ऐसा ही एक छोटा सा किस्सा और बताया है कि जो गाना था खई के पान बनारस वाला, जो कि किशोर दा ने गाया है, तो वो उन्होंने असल में पान खाकर गाया था, जो कि हमें रविंद्र जी ने बताया है दादर से। तो आप सभी का थैंक यू, आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, शो एंजॉय कर रहे हैं और इसी तरह जुड़े रहिए। और साथ ही साथ अभी और समय है, तब तक हम और गाने सुनेंगे। और किशोर दा की बात तो जितनी की जाए उतनी कम है, उनके काम की, उनकी क्रिएटिविटी की, लेकिन मैंने एक चीज़ सुनी है उनके बारे में और ये उनके काम को देख के लोगों ने महसूस किया और कई बार बोला भी है कि किशोर कुमार जी को दुनिया ने ना कई नाम दिए हैं, जैसा कि हम जानते हैं, लोगों ने अपने काम के लिए पागल, सरफिरा और जीनियस जाने क्या क्या कहते थे, लेकिन उनकी जो कला है वो इन सब चीज़ों से और निखरती थी, ये सुन के इन सब चीज़ों से और उनकी कला आज़ाद होती थी। वो वही करते थे जो उन्हें सही लगता था, पेड़ों को अपना दोस्त बना लेते थे, अपने घर के बाहर, अपने घर के बाहर उन्होंने बी वेयर ऑफ किशोर, मतलब किशोर से बच के रहिए, ऐसा साइन बोर्ड लगा के रखा था। गाने में अपनी शरारतें डाल देते थे, रिकॉर्डिंग को एक्टिंग बना देते थे और कभी कभी अपनी बात कहने के लिए आधी मूछ और अपनी बात मनवाने के लिए पूरा सर शेव करवा लेते थे। और शायद हर कलाकार के अंदर ना थोड़ा सा ऐसा पागलपन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान हर बार दुनिया से पूछ कर ही कुछ करेगा वो शायद नया क्या ही कर पाएगा, है ना। तो किशोर दा की मैडनेस ने सिर्फ हमें गाने नहीं दिए, उन्हें हमें एक अंदाज़ दिया है जीने का, अपनी तरह से जीने का, अपनी आवाज़ खोजने का, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और खुलकर जीने का, क्योंकि कभी कभी दुनिया जिसे पागलपन कहती है वही आने वाली पीढ़ियां उसे जीनियस कहती हैं। तो मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ठीक है, जब लोग उन्हें कुछ भी कहते हो बट आज सब उन्हें जीनियस कहते हैं। और इसी जीनियस थॉट के साथ हम सुनते हैं उनका एक और गाना।

समय हो चला है हमारे लवी जिंदगी कार्यक्रम को रैप अप करने का, समेटने का। आज के कार्यक्रम में आप सभी ने अपना साथ बनाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी कंटिन्यू करेंगे। 6:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और ठीक 6:15 पर

ब्रेक के बाद हम फिर से मिलेंगे अंदाजे बयां में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन 107.1 FM रेनबो, मेरे हर्जे स्वेच्छा के साथ।

स्वागत करती हूँ अंदाजे बयां में। वैसे आज का जो प्रोग्राम है किशोर दा के बाद एकदम अंदाजे बयां गजल गजल, तो मुझे लगा कि कुछ नए से शुरुआत करते हैं, इसलिए मैंने बर्फी का ये सॉन्ग प्ले किया है। अच्छा, कहते हैं ना कि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, बस अपनी रफ्तार से चलता रहता है। कभी हमें पीछे छोड़ जाता है, कभी कुछ ऐसा दे जाता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। अजीब बात है ना, जो लम्हा अभी हमारे पास है अगले ही पल वो याद बन जाता है। जैसे गुजरते वक्त का बस इतना सा फसाना है, जो आज है अपना कल वही अफसाना है। इसलिए शायद जिंदगी को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे महसूस करना, जो पल मिला है उसे पूरी तरह जी लेना। क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता, सिर्फ अपनी यादें छोड़ जाता है। और इसी एहसास के साथ सुनते हैं अगली पेशकश। अगली पेशकश है

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

अंदाजे बयां कुछ इस तरह से चल रहा है, बह रहा है, बस गाने चल रहे हैं। वैसे ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, किसी ख़बर का, किसी इंसान का, किसी ख़त का, या किसी ख़त के जवाब का, या फिर उस दिन का जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इंतज़ार भी बड़ा अजीब होता है, जिस चीज़ का इंतज़ार करते हैं पता नहीं वो कब आएगी या नहीं आएगी, और इसके इंतज़ार में जो वक्त गुजर रहा है ना, वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। इंतज़ार में भी एक अजीब सी रोशनी होती है, उम्मीद जिंदा हो तो रात भी छोटी होती है। जी बिल्कुल सही बात है, तो इंतज़ार कीजिए मगर अपनी ज़िंदगी को रोक कर नहीं, क्योंकि क्या पता जिस खुशी का आप इंतज़ार कर रहे हो वो रास्ते में हो, और रास्ते की खुशियाँ आपसे कह रही हो हमें भी तो देख लो, हम खड़े हैं। तो प्लीज़ किसी चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए, जैसा चल रहा है गो विद द फ्लो। और इसी सोच के साथ हम सुनते हैं अगला गाना।

और आज के इस शायराना सफ़र का आखिरी पड़ाव, कभी कभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है अरे वो वक्त तो इतनी जल्दी गुजर गया। बचपन के वो दिन, दोस्तों के साथ बेवजह घूमना, घर में साथ बैठकर खाना खाना, किसी अपने के साथ घंटों बातें करना, तब कहाँ पता था कि एक दिन इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हम याद किया करेंगे। शायद वक्त की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो चला जाता है लेकिन अपने पीछे कुछ लम्हे, कुछ यादें छोड़ जाता है जिन्हें हम उम्र भर अपने साथ रखते हैं। इसी बात पे कुछ लम्हे गुजर गए, कुछ यादों में ठहर गए, वक्त तो चलता रहा, हम मगर वहीं रह गए। तो आज की शाम बस इतना याद रखिएगा, वक्त को पकड़कर नहीं रखा जा सकता लेकिन उसके साथ बिताए पलों को बहुत खूबसूरती से जिया जा सकता है। और शायद यही जिंदगी है, कुछ गुजरता हुआ वक्त, कुछ ठहरी हुई यादें और उनके बीच हम और हमारा म्यूजिक, और म्यूजिक के साथ याद आया हमारा FM रेनबो, जिससे आप सभी जुड़े रहिए। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, सिर्फ अंदाजे बया से इजाज़त पूरी तरह से नहीं, क्योंकि ठीक 7 बजे आप सुनेंगे समाचार और 7:10 पर आपका फेवरेट प्रोग्राम हम तुम, लिसनर्स चॉइस यानी श्रोताओं की पसंद का प्रोग्राम आएगा, जिसमें आप अपनी पसंद के गाने हमें फरमाइश कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071 पर। काफ़ी लोगों ने अपने गाने भेज दिए हैं, आप भी भेज सकते हैं, और बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो, मेरे आज इस स्वेच्छा के साथ। और इस अंदाजी बयां का एक और खूबसूरत गाना सुनिए, इंजॉय कीजिए और मिलते हैं ब्रेक के बाद हम तुम में।

एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हम तुम प्रोग्राम में। समय हो रहा है 7:13 और प्रोग्राम चल रहा है हम तुम, जो कि आपकी पसंद का है। मैं जब से देख रही हूँ, सारे व्हाट्सएप चेक कर रही हूँ कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या आपकी फरमाइशें हैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि किशोर दा के गानों से अभी तक हमारे श्रोताओं का जो है मन नहीं भरा है। तो कोई बात नहीं, आज उनका जन्मदिन है तो हम पूरी तरह से ही सेलिब्रेट करते हैं। जब तक FM रेनबो में शो चल रहा है, जब तक पूरा दिन है, आज हम पूरी तरह से उन्हीं के गाने सुनते हैं और जो भी फरमाइशें मुझे दिख रही हैं मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। बातें भी करेंगे और म्यूज़िक भी सुनेंगे, अच्छे अच्छे गाने भी सुनेंगे। और आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, आप सभी की फरमाइशें ज़रूर पूरी करूँगी। और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, मेरे आज इस स्वेच्छा के साथ। इसी बात पे अगला गाना।

जी सभी ने बहुत खूबसूरत गानों की फरमाइश की है और कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करती हूँ, जो हमने गाना बजाया था मेरे सामने वाली खिड़की, वो चेतन कुमार जी ने फरमाइश किया था। और अभी हम सुनेंगे विजेंद्र घटोल जी की पसंद का एक राधा एक मीरा। मेरे सपनों की रानी फिरोज़ शिकनपुरिया जी ने फरमाइश किया था। और फूलों के रंग से हम जो सुनेंगे अभी अजय साखरे जी, और कस्मे वादे जो राजेश जी ने किया है फरमाइश वो हम सुनेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, ये दिग्दर्शन जी और कविता जी ने फरमाइश किया है। जी आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हम आगे भी गाने सुनेंगे और बाकी के नाम भी मैं ज़रूर लूँगी।

जी, समय हो रहा है 7:34। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। मैं हूँ आरजे स्वेच्छा। समय जो है बढ़ता जा रहा है अपने अंतिम पड़ाव की तरफ, और फरमाइशें जो है वो रुक नहीं रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। उसी बीच में मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों की और फरमाइशें हैं जो हम प्ले करने वाले हैं, और उसके बाद बाकी सभी का मैं नाम लूँगी। राकेश माथुर जी का गाना है जब से तेरे नैना, फिल्म सावरिया से, और इसके बाद लाल इश्क दीपा पालकर जी का। उसके बाद हम सुनेंगे चिंगारी कोई भड़के, जो कि हीरा मनी जी और पंकज मोहर जी ने रिक्वेस्ट किया है। और बाकी हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनके मैं अभी नाम लूँगी, जो बचे हुए हैं उन लोगों के। बाकी आप सुनते रहिए हम म्यूज़िक FM रेनबो पे, और जुड़े रहिए हमारे साथ, और सुनिए अगला गाना।

समय हो रहा है 7:52 और हम बढ़ चुके हैं अंतिम पड़ाव की तरफ। अब हम तुमको भी समेटने का वक्त आ गया है और आप सभी इतने वक्त से, पूरे 3 घंटे से हमारे साथ जुड़े हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोगों की फरमाइश पूरी कर सकी हूँ उतने लोगों की कर पाई हूँ, और उसी के साथ मैं सबके एक बार नाम लेना चाहूँगी जो आप सभी लोग इतनी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपा पालकर जी, फिरोज सिगनपुरिया, रघुनाथ जी कोल्हापुर से, प्रदीप अनंत कृष्णन जी, मेहर अरोरा जी और प्रणव शिंदे जी, राकेश माथुर जी, विजेंद्र घटोल अकोला से, मीना जी, शंकराचार्य जी तेलंगाना से, प्रमोद चिंचोलकर जी, नितिन स्वामी जी, मुकेश कश्यप जी, राजेंद्र परमार, राजेश लद्धा जी, सुनील गायकवाड़, कल्पना जी उल्लासनगर से, पंकज मोहर जी, दत्तात्रेय आदत वेलापुर से, महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, बलकरण वर्मा जी, हीरामणि वर्मा, चेतन कुमार, संजय दर्शन, अजय साखरे इंदौर से, दिग्दर्शन और कविता जी, अशोक पाटिल वर्ली से, आदर्श कनौजिया जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी 1-2 गानों का और वक्त है जो कि मैं बैक टू बैक चलाने वाली हूँ, आप सुनिए और मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त। मिलती हूँ अगले बार फिर से आपके साथ यही FM रेनबो पर। तब तक आप अपना अपनों का ख्याल रखिए, अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो। हमसे यूं ही जुड़े रहिए म्यूज़िक के ज़रिए। म्यूज़िक एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सभी बहुत जुड़े हुए हैं और उसी की वजह से आप सब मेरे साथ 3 घंटे से बने हुए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब साथ हैं, आप सब लोग मैसेजेस करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है 3 घंटे आप सभी के साथ बने रहने का। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलती हूँ अगली बार और छोड़ के जा रही हूँ आपको इस गाने के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो। मैं हूँ RJ स्वेच्छा और आज के लिए बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट

0: ट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
3: वो एक प्राइवेट

0: मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
1: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। UPI ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
4: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर

0: वेलफेयर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2-3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देश भर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes Registration of Births and Deaths Amendment Bill to make delayed registration more stringent. Supreme Court directs Reserve Bank of India to prepare and circulate a SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. 274 fugitive criminals brought back to India from 36 countries between 2019 and 2026, says Home Ministry. New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia felicitates Indian medal winners after successful Glasgow Commonwealth Games campaign. And in badminton, Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithvi Krishnamurthy Roy advances to the men's doubles second round at Korea Masters Tournament in Assam. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nithyananda Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. We have more from a correspondent.
3: The objective of this bill is to prevent delays in the registration of births and deaths and to encourage people to register in a timely manner. The bill provides that if a birth or death is reported to the registrar more than 1 year but within 2 years, it may be registered only with the approval of the district magistrate, sub-divisional magistrate or an executive magistrate. The bill further states that if a birth or death is reported to the registrar more than 2 years, it will be registered only on the order of the judicial magistrate of the first class. The bill also mandates that the designated authority must verify the authenticity of the reported birth or death before granting

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से

274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ साहब, आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM की लहरों पर। मैं हूँ इस वक्त आपके साथ खुर्शीद। और साहब, बात उस दौर की जब हम बहुत छोटे थे और चाहते थे कि वक्त जो है वो जल्दी से बीत जाए, हम बहुत जल्द बड़े हो जाएं, जल्दी कामयाब हो जाएं। और जब अब हम सचमुच में बड़े हो गए तो दिल कहता है कि काश कुछ लम्हे वहीं ठहर जाते। शायद इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि कुछ लोग कभी ना बदलें, कुछ रिश्ते कभी ना बदलें और कुछ शामें हमेशा वैसी रहें जैसे पहले हुआ करती थी। लेकिन वक्त का अपना दस्तूर है और किसी के लिए ये वक्त रुकता नहीं है। वो अपने पीछे यादें ज़रूर छोड़ जाता है और जब वही यादें किसी गज़ल की शक्ल में लौटती हैं तो दिल बरबस मुस्कुरा उठता है।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी ची नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: वक्त की सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमें बदलता ज़रूर है, लेकिन अगर दिल में मोहब्बत बची रहे ना तो इंसान कभी कहीं कि बूढ़ा नहीं होता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग उम्र से नहीं बल्कि अपनी मुस्कुराहट से पहचाने जाते हैं। उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और शायद इसीलिए कहा भी गया है कि चेहरे पर आई झुर्रियाँ उम्र बताती हैं, लेकिन दिल की रौनक इंसानियत बताती है। हम सबको अपनी ज़िंदगी में ऐसा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए जिससे मिलकर लोगों का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। ये कलाम सुनकर शायद आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए जो सीने में जलन है।

कभी कभी हम सोचते हैं कि जिंदगी ने हमें क्या दिया है, लेकिन शायद कभी ये भी सोचना चाहिए कि जिंदगी ने हमसे क्या सीखा है। क्या हमने किसी की उम्मीद बढ़ाई? क्या हमने किसी उदास चेहरे पर कोई मुस्कुराहट लाने की कोशिश की? क्या हमारी वजह से किसी का दिन थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो गया? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रही है। गज़लें भी हमें ये सिखाती हैं कि इंसान की असली पहचान उसके अल्फाजों से नहीं बल्कि उसके एहसास से होती है। अल्फाज तो हर कोई भूल लेता है, लेकिन दिल से निकली हुई बात सीधे दिल तक जाती है। गौर कीजिएगा कभी।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर

0: बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: रंगे में फिलहाल आप सुन रहे हैं 102.6 FM के लहरों पर। मैं हूं आपके साथ खुर्शीद। और साहब, वक्त एक मुसाफिर है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन जाते जाते हर इंसान के हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ जाता है। किसी के हाथ में तजुर्बा आता है तो किसी को सब्र मिलता है और किसी को मोहब्बत मिलती है। और साहब, किसी को कुछ ऐसी यादें जो उम्र भर उसके साथ चलती हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं है कि लोग हमें कितने नाम से जानते हैं, बल्कि ये है कि हमारे जाने के बाद लोग हमें किस एहसास से याद करेंगे। और अगर हमारी वजह से किसी की दुआ निकलती हो, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो, तो समझिए कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है, खूबसूरत इनाम ज़िंदगी ने हमें दे दिया है। बहरहाल, अब इस प्रोग्राम से भी मुझे इजाज़त चाहिए। और आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ ऐड किया है मैंने, कुछ खूबसूरत लम्हे आपकी ज़िंदगी में आए, ज़रूर बताइएगा। बहरहाल, इस प्रोग्राम से इजाज़त। और जाते जाते हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। खुदा हाफिज़।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूर औलिया पर हुए हमले की निंदा की। कहा, ऐसे हमले तुरंत रुकने चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। कहा, किसान हितैषी इथेनॉल नीति से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। मौसम विभाग ने केरलम के 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्रीक्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूर औलिया पर हुए हमले की निंदा की। कहा, ऐसे हमले तुरंत रुकने चाहिए। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर एक से दो दिन में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। कहा, किसान हितैषी इथेनॉल नीति से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम जनता के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। आमजन सितंबर 15 तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। केरलम के 12 जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्रीक्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारत टीम हिस्सा लेगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। अच्छा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी रिनबू पर प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एसएमवी फैज नूर औलिया पर हुए हमले की निंदा की। कहा, ऐसे हमले तुरंत रुकने चाहिए। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर एक से दो दिन में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक में मेजबानी करेगा। बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। कहा, किसान हितैषी इथेनॉल नीति से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। केरलम के 12 जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट

जारी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल प्रीक्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। यह विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत MSV फैज नूर औलिया पर हुए हमले की निंदा की। कहा कि ऐसे हमले तुरंत रुकने चाहिए। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक यह 6 अगस्त तक चलेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। कहा किसान हितैषी इथेनॉल नीति से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और कोरिया मास्टर बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है 3:03। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज। जुड़े रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक इंट्रैक्स के साथ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है।

जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। यह विलंबित पंजीकरण के कारण प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत MSV फैज न्यू ओलिया पर हुए हमले की निंदा की। कहा, ऐसा हमले तुरंत रोकने चाहिए। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। कहा, किसान हितैषी इथेनॉल नीति से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कोरिया मास्टर बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 MHz पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारे गामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।